ब्रॉडकास्टर का ने रिपोर्ट किया था कि फ़ौज ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात एक हमले में अल अमूदी को कत्ल करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट में उन्हें गजा में हमास का गैर सरकारी रहनुमा और मुतवक्को खुफिया अंदरूनी इंतखाबात में तहरीक की बाज़ाब्ता सरबाही के लिए एक अहम उम्मीदवार करार दिया गया था। कान ने कहा कि गजा से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद हलाक हुए हैं, लेकिन हलाक होने वालों की फहरिस्त में अल उमूदी का नाम गायब था। उनकी किस्मत के बारे में सूरत हाल अभी गैर वाज़ेह है। हमास के ज़राए ने अनाडोली एजेंसी को बताया कि अक्टूबर 2023 में इसराइली जंग शुरू होने से पहले अल अमूदी तहरीक के मीडिया डिपार्टमेंट के सरबरा और उसके सियासी ब्यूरो के रुकन थे। 2024 में हमास के रहनुमा यहया सिनवार और उनके नायब रूही मुश्तही की शहादत के बाद अल उमीदी खलीलुल हया के नायब बन गए, जो इस वक्त गजा में तहरीक के सरबरा थे। जुलाई 2026 में खलील अलहिया के हमास के सियासी ब्यूरो के सरबरा मुंतखब होने के बाद अल उमीदी ने जानशीन के इंतखाब तक कायम मकाम रहनुमा के तौर पर गजा में तहरीक चलाने की जिम्मेदारी संभाली थी। तिबी जराये के मुताबिक मगरबी गजा शहर में एक रिहायशी इमारत पर हमले में 4 खवातीन समेत 5 फलस्तीनी हलाक और 6 दीगर जख्मी हुए। हलाक होने वालों में 2 मसीही खवातीन भी शामिल हैं। हलाक होने वालों में 55 साल मायसा अबू दाऊद और उनकी 36 साल बेटी मारिया अबू दाऊद के साथ साथ 48 साल यास्मीन अलबूबू, 23 साल हलूम अलबूबू और 20 साल बिलाल अली अउदा शामिल हैं। रूस ने कीफ में मौजूद गैर मुल्की शहरियों और सफारतकारों पर जोर दिया है कि वह यूक्रेनी दारुलहुकूमत छोड़ दें और उस मुल्क का सफर करने से गुरेज करें, जबकि मकामी बाशिंदों को फौजी और इंतजामी तनसीबात से दूर रहने का भी मशवरा दिया गया है। एक सरकारी बयान में रूसी उमूर खारजा ने कहा कि मास्को, कीफ और दीगर यूक्रेनी शहरों में फौजी बुनियादी ढांचे के खिलाफ मुसलसल हमले जारी रखेगा। बयान में इन कार्रवाइयों को उन इकदाम का बराह रास्त जवाब करार दिया गया जिन्होंने उसने रूसी सिविलियन आबादी और मुल्की बुनियादी ढांचे के खिलाफ यूक्रेनी अफवाज की जानब से की जाने वाली दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ नाम दिया है। वजारत ने कहा कि रूसी वजारत खारजा एक बार फिर गैर मुल्की शहरियों बशमूल सफारती मिशन के अहलकारों को यूक्रेन में रहने या वहाँ का सफ़र करने के खिलाफ इंतबाह करती है। किसी भी मुमकिन मनफी नतज की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर उन लोगों पर आयद होती है जो इस इंतबाह को नज़रअंदाज करते हैं। वजारत ने इस बात का इशारा दिया कि यह रहनुमाई सबसे पहले 25 मई के एक बयान में गैर मुल्की शराकत दारों को भेजे गए बाज़ाब्ता सिफारती नोटों के साथ तफसील से बताई गई थी। फिर 27 मई को नायब वज़ीर ख़ारिजा मिखाइल गालोज़िन की तरफ से सफारती कोर के लिए एक ब्रीफिंग के दौरान इसका इआदा किया गया था। मास्को ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि कई मगरबी ममालिक बशमूल अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड ने बार बार सफरी इंतबाह जारी किए हैं जिनमें शहरियों को यूक्रेन का दौरा ना करने का मशवरा दिया गया है, और यह हाल ही में अगस्त में ऐसा किया गया था। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि कीव में बहुत सारे सफारतखाने फ़ाल हैं और गैर मुल्की हुक्काम यूक्रेन का दौरा करना जारी रखे हुए हैं, और ख़बरदार किया कि जो लोग इंतबाहात को नज़रअंदाज कर रहे हैं वो जानबूझकर खुद को मोहलिक खतरे में डालते हैं। वजारत ने बात ख़त्म करते हुए कहा कि रूसी फेडरेशन की मुसलह अफवाज बड़े पैमाने पर जवाबी हमले जारी रखेंगी।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: यमन की बैनुल अक्वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत की हामी अफवाज ने दारुलहुकूमत सना और हुसी ग्रुप के शुमाली गढ़ सादा में हौसी अहदाफ के खिलाफ शदीद हमले शुरू कर दिए हैं। यमनी मुसलह अफवाज के तर्जुमान ने गुज़िश्ता रोज़ तस्दीक की कि फ़ौजी यूनिट्स अहम अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, ताहम उन्होंने मखसूस तनसीबात या जानी नुकसान के बारे में मज़ीद ऑपरेशनल तफसीलात फराहम नहीं की। इससे कबल हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले अलमसीरा टेलीविज़न नेटवर्क ने सना पर एक हमले की इत्तला दी थी कि जिसका ज़िम्मेदार उसने सऊदी अरब को ठहराया, ताहम रियाज की जानब से इस दावे पर फौरी तौर पर कोई तस्दीक या बयान सामने नहीं आया है। अलमसीरा टीवी के मुताबिक सऊदी तैयारों ने सना पर 26 फिजाई हमले किए, लेकिन अहदाफ या हलाकतों की तफसीलात नहीं बताईं। सना में मौजूद AFP के दो नामा निगारों ने भी ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनने और जंगी तैयारों को शहर पर मिज़ाइल दागते हुए देखने की तस्दीक की है। दूसरी जानब हफ्ते की दोपहर सऊदी अरब में रियाज के जुनूब में वाक़ एक आरामको तनसीब से शोले और धुआं उठते हुए देखा गया। हफ्ते के रोज़ यमनी फ़ौज ने यह भी दावा किया कि उसने मुख्तलिफ महाजों पर 257 ऑपरेशन के दौरान

तस्वीर करें कि एक इंसान रात के घुप अंधेरे में बाहर निकलता है। उसके हाथ में कोई नक्शा नहीं है, कोई कुतुब नुमा नहीं है। वो मस्नूई सैयारे जो आज दुनिया को हमारी उंगलियों की नोक पर ले आए हैं, अभी तक ईजाद नहीं हुए थे। लेकिन जब वो अपना सर ऊपर उठाता है तो वहाँ मौजूद होते हैं सैकड़ों हजारों रोशनी के नक़ात। इस लम्हे इंसान ने अपने आप से जो पहला सवाल पूछा वो ये था कि मैं कहाँ हूँ। मौजूद सामीन, इंसानियत ने आसमां को सिर्फ हैरत और तारीफ से नहीं देखा, उसने उसे पढ़ना एक जबान की तरह समझना सीखा। क्योंकि बाज़ औक़ात आसमान ज़मीन का सबसे बेहतरीन और बेऐब नक्शा होता था। क़ुरून वुस्ता में जब यरूशलम का नाम लिया जाता है तो आमतौर पर जहन में शहर की फसीलें, इबादतगाहें और मुक़दस मकामात आते हैं। लेकिन इस शहर का एक और कम मालूम मगर बहुत गहरा साइंसी पहलू भी था। अल-क़ुद्स एक ऐसा रियाजियाती मरकज़ था जहां कायनात का इंच इंच नापा और हिसाब लगाया जाता था। अब हम आपको अल-क़ुद्स की तंग गलियों से होते हुए मस्जिद अक्सा जाने वाली शाहरा बाबुल सिलसिला पर वाक़ तारीखी खालिदिया कुतुब खाने ले जाना चाहते हैं। 1900 में कायम होने वाली और फ़िलिस्तीन में निजी तौर पर खोली जाने वाली ये पहली अरब पब्लिक लाइब्रेरी तकरीबन 1200 नादिर कलमी नुस्खों की मेज़बान है। मस्जिद अक्सा लाइब्रेरी और खालिदिया जैसी दर्सगाहों और मराकज़ में महफूज इन मख्तूतात में इल्म फलकियात और इल्म मीकात के शोबे में लिखी गई इंतहाई कीमती तसानीफ शामिल हैं। इस वरासत की सबसे वाज़े और ठोस मिसालों में से एक 14वीं सदी के माहिर फलकियात ज़ैनुद्दीन अल-कुरकी से मंसूब है। अल-कुरकी ने ख़ास तौर पर अल-क़ुद्स के अर्ज़ बलद के मुताबिक खसूसी फलकियाती हिसाब किताब के जदूल तैयार किए थे। ये जदूल हमें यह दिखाते हैं, क़ुद्स सिर्फ एक ऐसा शहर नहीं था जिसे मुक़द्दस माना जाता था, बल्कि एक ऐसा शहर भी था जिसका अर्ज़ बलद नापा गया और आसमां में उसके मकाम का रियाजियाती तायुन किया गया। क्योंकि अगरचे हम सब एक ही आसमां के नीचे रहते हैं, लेकिन उफक पर किसी सितारे का जाविया शहर के लिहाज से बदल जाता है जहां आप खड़े होते हैं। अल-क़ुद्स के लिए एक अलग हिसाब किताब की जरूरत थी। ठीक उसी मोड़ पर हमारा सामना अल-क़ुद्स की फलकियाती तारीख के सबसे हैरान कुन सच से होता है। जब फलकियात का लफ्ज़ बोला जाए तो हो सकता है कि आपके जहन में ऊंचे गुंबदों वाली देव हैकल इमारतें और शानदार रसदगाहें उभरने लगें, लेकिन अल-क़ुद्स में मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। अगर आप अल-क़ुद्स में पत्थरों से बनी किसी बहुत बड़ी रसदगाह की इमारत तलाश कर रहे हैं तो आप गलत जगह देख रहे हैं। क्योंकि हमारे पास मौजूद तारीखी दस्तावेज़ात ये जाहिर करती हैं कि क़ुरून वुस्ता के दौरान अल-क़ुद्स में रसदगाह की कोई बड़ी इमारत तामीर नहीं की गई थी। तो फिर इतने दकीक और हसास फलकियाती हिसाब किताब कहाँ किए जाते थे? जवाब असल में बहुत सादा है। अल-क़ुद्स की रसदगाह इमारतों से नहीं बल्कि खुद स्कॉलर्स और उलमा के वजूद से बनी थी। घरों की छतों से किए जाने वाले मुशाहिदात, कलमी नुस्खे, मुकीत खानों में रखे जाने वाले रिकॉर्ड और वो इल्म जो इन दानिश्वरों ने अपने जहनों में महफूज कर रखा था, शायद फ़िलिस्तीनी साइंसी तारीख का सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज पहलू यही है। कुछ साइंसी मराकज़ की सबसे अहम इमारत वो होती है जो कभी तामीर ही नहीं की गई। उनकी सबसे बड़ी इमारत खुद इल्म है। आसमां के साथ फिलिस्तीन का यह गहरा ताल्लुक सिर्फ माजी तक महदूद नहीं रहा। यह कहानी आज के दौर में एक ज़बरदस्त साइंसी मुजाहिमत के साथ जारी है। साल 2012 में गजा में बैन अल-अक़वामी सतह का एक बहुत ही ख़ास कदम उठाया गया।

इथोपिया में साद मसल्ला मुखालिफ धड़ों का इथोपियन पीपल्स फोर्सेस अलायंस फॉर सर्वाइवल के नाम से यकजा होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुल्क में जारी सलामती का बहरान एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। अम्हारा फानो नेशनल मूवमेंट, टीग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और विमो लिबरेशन आर्मी और उसके साथ ओगादीन, अफार, बहनशाह निगोल और गमूज के महवरों से ताल्लुक़ रखने वाले चार धड़ों को एक ही छतरी तले लाने वाले इस इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि इसका हदफ अबी अहमद की हुकूमत को तब्दील करना और उसके बाद एक जामे अबूरी हुकूमत कायम करना है। और शाम के शुमाली और मशरक़ी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवे जोलू का इस मौजू पर तज़िया पेश खिदमत है। सामिन, इस पेशरफ की असल अहमियत साख मुख्तलिफ धड़ों की महज अददी तादाद से नहीं बल्कि उन सियासी मंसूबों के एक ही महाज पर इकट्ठे

होने से हैं जिनका आपस में मेल खाना इंतहाई मुश्किल है। हम ऐसे अदाकारों की बात कर रहे हैं जो अभी कल तक मुख्तलिफ महाज़ों पर और बाज़ औक़ात बराह रास्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खड़े थे। इसकी सबसे हैरान कुन मिसाल फ़ानो और TPLF के ताल्लुकात हैं। 2020-2022 की टीग्रे जंग के दौरान फ़ानो के अनासिर वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर टीग्रे की अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, जबकि आज ये दोनों धड़े एक ही इत्तेहाद में शामिल हैं। मज़ीद ये कि अम्हारा और टीग्रे के फरीक़ैन के दरमियान मगरबी टीग्रे का मसला जैसे इंतहाई हसास सरहदी और इलाकाई तनाज़ात अब भी हल तलब हैं। इस नए इत्तेहाद का क़याम ये ज़ाहिर नहीं करता कि ये इख्तिलाफ़ ख़त्म हो गए हैं, बल्कि इसके बरअक्स ये सोचने पर मजबूर करता है कि दोनों फरीक़ैन अब मौजूदा वफाकी हुकूमत को अपने लिए एक अव्वलीन और ज़्यादा बड़ा ख़तरा समझने लगे हैं। लिहाजा ये इत्तेहाद फ़िलहाल किसी मुश्तरका इथोपिया के तस्वुर के बजाय एक मुश्तरका ख़तरे के एहसास पर मबनी इत्तेहाद की हैसियत रखता है। ये पेशरफ बैक वक्त एक बार फिर यह साबित करती है कि इथोपिया की अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल को सिर्फ टीग्रे के मसले के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। तवील अरसे से जारी और रोमोवोज मरकज पर मबनी मुसल्ला जद्दोजहद 2023 से अम्हारा के इलाके में शिद्दत इख्तियार करने वाली फ़ानो और वफाकी हुकूमत की झड़पें और इर्द गिर्द के इलाकों के नस्ली और सियासी मुतालबात ने मुल्क के बहरान के नक्शे को कसीरुल हदफ बना दिया है। टीग्रे में हालिया झड़पें और जुलाई में TPLF की जानिब से प्रिटोरिया माहिदे को अमली तौर पर मुर्दा करार देना यकीनन एक संगीन ख़तरा है। ताहम ये नया इत्तेहाद वाज़ह करता है कि यह इथोपिया की कमज़ोरियों का दायरा कार टीग्रे से कहीं ज़्यादा वसी है। यहाँ दूसरा अहम मसला बैरूनी अनासिर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इलाकाई मसाबिकत है। मौजूदा खुले ज़राए ऐसे काफ़ी शवाहिद फराहम नहीं करते जो यह साबित कर सकें कि यह नया इत्तेहाद किसी बैरूनी ताकत की एमा पर कायम हुआ है। इसीलिए किसी बैरूनी स्पॉन्सरशिप का बराह रास्त ताल्लुक जोड़ना कबल उस वक्त होगा। इसके बावजूद इथोपिया के अंदर मुसल्ला धड़ों की तकसीम और मरकज़ी हुकूमत के साथ उनके तनाज़ात की गहराई उन्हें खित्ते की रियासतों के दरमियान जारी मुसाबिकत में इस्तेमाल किए जाने के लिए साजगार बना रही है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हालिया बरसों में बनने वाले बदलते हुए इत्तेहादों को मद्देनज़र रखा जाए तो इथोपिया के नस्ली सियासी और यहाँ तक के मजहबी इख्तलाफात का बैरूनी मुसाबिकत के आलम में तब्दील हो जाना अदीस अबाबा के लिए एक ऐसा सिक्योरिटी रिस्क है जिससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मजीद बरआँ ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब इथोपिया में कौमी मुकालमा का अमल जारी है। नेशनल डायलॉग कमीशन का मौक़िफ है कि मुसल्लह ग्रोहों समेत तनाज़े के तमाम फरीक़ैन की मेज़ पर नुमाइंदगी होनी चाहिए और इसने 2026 के दौरान हथियार डालने वाले अम्हारा ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात भी किए हैं। इसके बरअक्स इस अमल पर यह तनकीद भी जारी है कि ये अहम मुसल्लह और सियासी अदाकारों को खातिर ख्वाहत तक शामिल करने में नाकाम रहा है। चुनाचे हुकूमत के लिए असल इम्तहान फौजी दबाव और सियासी मुज़ाकरात के दरमियान तवाज़ुन कायम करना होगा। यहाँ वो बुनियादी सवाल उभरता है जो इस नए बकाए बाहमी के इत्तेहाद की उम्र का तायुन करेगा। अभी अहमद की मुखालफत इन फरीक़ैन के तारीखी तनाज़ियात और एक दूसरे से मुख्तलिफ इथोपिया मंसूबों को कब तक पसे पुश धकेलने में कामयाब रह सकती है। इथोपिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हालिया तारीख ये दिखाती है कि सिर्फ एक मुश्तरका दुश्मन पर मबनी इत्तेहाद सियासी हदफ पर इत्तफाक राय ना होने की सूरत में नए तनाज़ियात को जन्म देने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से इस नए इत्तेहाद का ज़ुहूर ना सिर्फ अदिस अबाबा के लिए एक फ़ौजी चैलेंज है बल्कि उसे एक बड़े मार्के के नए मरहले के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए जो ये तय करेगा कि इथोपिया का मुस्तकबिल मुसल्ला दुश्मनी के जरिए माय होगा या एक जाम सियासी बातचीत के जरिए। और सैम के शुमाली और मशरक़ी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवे जियोलू का इस मौजू पर तज़िया आपकी खिदमत में पेश किया। शोरश ज़दा अफ्रीका।